0: आप पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
0: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
2: श्री प्रताप राव जाधव, दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक

0: दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আর এন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ

प्रभाव। यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है।

बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव

जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स। दैट इज व्हाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग, दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको।

0: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका

0: बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है योग साधकों के बीच।
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये

0: सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
1: जी
0: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके
1: जी
0: लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक, वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है,
1: जी
0: उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें
0: हाँ,
1: कहा
0: ये
1: जाता है।
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से है।
1: जी और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: गुरुजी, मुनेश शर्मा जी, वी'ड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस आसना।
3: यस, एक्चुअली आसन को हम इस तरह से समझें कि सीट ऑफ अवेयरनेस, हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है, इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से,
1: जी
3: ये जागृत होती है और उसकी आसन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुँच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है। और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी, कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं, योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में?
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस
1: जी
3: जानता नहीं है, है ना? अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना?
1: जी
3: जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं? जोड़ कौन रहा होता है? हमारी चेतना। हमारी
1: जी
3: चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर
1: जी
3: उसका प्रेजेंस हमारी टोटैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं।
1: जी
3: इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
0: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर

0: आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
1: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
0: जी।
1: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
0: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
0: जी।
2: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी।
3: Yes, and...
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ज़मीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ, तो अर्ध चक्रासन है हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी

0: कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है। हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहाँ पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं। मेरुदंड को एकदम सीधा करके और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मेनी एंथुसियास्ट्स एंड वॉलंटियर्स हु हैव कम हियर एंड ही इज इंटरैक्टिंग विद देम and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइन्ड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री

0: जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन।
1: परवर्ती अभ्यास शशकासन, वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ कोलिए, वज्रासन थे के दोनों हाथों के बाहरी दिखे खुलून और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें, दोनों हाथ के फ्लोर पे स्थापित करून और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए, सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथ के स्लाइड करते करते नीचे जान, नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास,
2: नितंब के गोड़ालीर संगे रखार चेष्टा,
1: टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे,
2: परवर्ती आसन उत्तान मंडुकासन,
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए,
2: दोनों हाथ के साइड थे के ऊपरे निये जान,
1: एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें,
2: डान हाथ के भाज करे बाम कांधे एवं बाम हाथ के भाज करे डान कांधे राखून,
1: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए, पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए,
2: दुटो पाके बाहर दिखे छोड़िए, शिथिल दंडासन विश्राम करून।
1: अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे,
2: परवर्ती अभ्यास वक्रासन,
1: शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर के घुटने के पास रखें,
2: डान हाथों के भाज करून बाम पैर का छे,
1: दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें,
2: डान हाथ के पीछे दिखे स्थापित करून,
1: बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास,
2: बाम हाथ दिए उल्ट पा धोरार चेष्टा करून
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते घर डान दिखे घोड़ान
1: और स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए,
2: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ यही अवस्था बजाय थकून
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे,
2: परवर्ती अभ्यास उल्टो पा थे,
1: बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें, दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचावों को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे,
2: एवं हमरा पेटेर ऊपर भर दिए आसन शुरू करबो,
1: दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए,
2: दंडासन स्थिति थे के पेटेर ऊपर सुए पड़ून,
1: सिर आगे मंच की तरफ रहे,
2: माथा स्टेजर दिखे थक पे,
1: पैर पीछे की तरफ हो,

0: দোনো পেড়কে বীচ মে এক ফুট কা অন্তর রাখে,
1: দুটো পায়ের মাঝখানে এক ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন,
0: দোনো এড়িও কো অন্দর কি ওর আর পঞ্জে বাহার কি তরফ রহে, দোনো হাতো কো মোড়তে হুয়ে দায়ে হথেলিও কো বায়ে হথেলিও পর স্থাপিত করে,
1: ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপিত করুন,
0: বায়ে আর দায়ে গাল কো দায়ে হাত পর স্থাপিত করে,
1: ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর।
0: इसको हम मकरासन कहते हैं,
1: देखिए मकरासन बोला है,
0: यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंग्जाइटी स्ट्रेस तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन,
0: और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए,
1: सांस नीते नीते सामने रहते के हाथ नियासन,
0: और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए,
1: दुटो हाथ के छाती सामने नियासन,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए,
1: सांस नीते नीते शरीर के बाकन और चेष्टा करो,
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए,
1: ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो।
0: यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक के और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए,
1: मकरासन विश्राम करूं।
0: अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती आसन शलभासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन,
0: दोनों हाथों को जांगों के पास लाइए,
1: दुटो हाथ के जांगेर पासे रखूं,
0: और दोनों हथेलियां जमीन पर जमीन की तरफ रखे, टोड़ी को जमीन से लगा कर रखे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए,
1: सांस नीते नीते दुटो पाके ऊपर तुलार चेष्टा करो,
0: प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का,
1: प्रयास करो कि दुटो पा सोजा थाके,
0: और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए, पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए,
1: मकरासन आराम करो।
0: अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे,
1: चीत होए करा आसन अभ्यास करबो,
0: बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए,
1: पीठे ऊपर सुए पड़ो।
0: पहला अभ्यास सेतु बंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है, दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दुटो पाके एक संगे नियासन,
0: और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए,
1: दुटो पाके भाज करते करते नितंबेर काछे नियासन,
0: दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास,
1: दुटो हाथ दिए गोड़ाली धरार चेष्टा करो,
0: श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास,
1: श्वास नीते नीते अपना शरीर दिए ब्रिजेर आकार दिन,
0: सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन,
1: परवर्ती अभ्यास उत्थान पादासन।
0: दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दुटो पाके एक संगे नियासन,
0: हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखे, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए,
1: सांस नीते नीते पायर द्वारा 45 डिग्री कौन दिन,
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए,
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास बजाय रखो,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर ले

0: लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन, परवर्ती अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए।
1: सांस नीते नीते 90 डिग्री कोणे न्यासन।
0: प्रयास करिए घुटने सीधा रहे।
1: चेष्टा करून अपना दोटो हाटू सोजा थाके
0: और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए।
1: दुटो हाथ के हमरा लॉक करबो दुटो पायर माझखाने।
0: श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास।
1: सांस छाड़ते छाड़ते चिबुक टिकाने और चेष्टा करबो
0: और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला दूर रखिए। दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए।
1: दुटो पायर मध्य दूरत्व बजाय रखुन एवं दुटो हाथेर मध्य दूरत्व बजाय रखुन।
0: हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें।
1: हाथेर तालु आकाशेर दिखे
0: और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखे। शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाई या दाए करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाई या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखे। शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास कपालभाति।
0: जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
1: जी कोनो ध्यान मुद्राएं बसुन, जेमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन, एवं दुटो चोख के आलतो करे बंद करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

0: का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाट सोजा रखो एवं चोख बंद रखो।
0: बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए।
1: बाम हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, बाम हाथों पर रखो
0: और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके
1: डान हाथ दिए प्राणायाम मुद्रा बनाने की चेष्टा करो।
0: धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम।
0: दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें।
1: दो हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, हाथों पर रखो।
0: जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए।
1: जीभ बाहर बेर करे दो पास दिए पाखी टोटेर मत आकृति दी।
0: और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता तनाव अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
0: षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, अंगूठे को कान को अंगूठे से कान को बंद कीजिए। सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें।
1: वृद्धांगुली दिए कान एवं बाकी अंगुल दिए
0: नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए।

दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखे, इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता अवसाद

0: से अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कीजिए।
1: এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব। দুটো চোখ বন্ধ করুন।
0: কমর গর্দন সিধা রেখে দোনোঁ হাতোঁ সে জ্ঞান মুদ্রা ইয়া ধ্যান মুদ্রা কা ধারণ কিজিয়ে।
1: দুটো হাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন।
0: কন্ধো কো শিথিল কিজিয়ে, আপনি শ্বাস পর পুরা ধ্যান কেন্দ্রিত কিজিয়ে। ধীমে আর গহরা শ্বাস লিজিয়ে আর ধীমা আর গহরা শ্বাস ছোড়িয়ে। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे। हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में।

कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखों को पलकों को झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलिए और हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठे रहना है जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे, कोई उठना नहीं है। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने मैट पर बैठे रहें।

नेतृत्व किया आज जो 12वां योग दिवस था, हमने देखा कि किस तरह से जो आम जन है उन्होंने इस योग दिवस

0: बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो साफ तौर पर बताता है कि आपकी संतुलित अप्रोच योग के प्रति कैसे आपको निरोगी बनाती है, कर्मयोगी बनाती है। और खास तौर पर जब आप बैलेंस्ड स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चलते हैं कि आपका शारीरिक सबल बना रहे, आप मानसिक तौर पर भी मजबूत रहें, योग उसमें अहम भूमिका अदा करता है।
1: तो एक धरती एक परिवार, योग से जुड़ा सारा संसार, और आसन से आत्मविश्वास तक फिटनेस का है यही मंत्र। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से जब ऐतिहासिक योगा अभ्यास

0: जुड़ा सारा संसार और आसन से आत्मविश्वास तक फिटनेस का है यही मंत्र। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से जब ऐतिहासिक योगा अभ्यास का नेतृत्व किया जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि योग के साथ अब सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया जुड़ चुकी है और इस फिटनेस मंत्र को लेकर अब सभी आगे बढ़ रहे हैं। और कोलकाता में आज विश्व रिकॉर्ड बना है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस थीम के साथ इस साल मनाया जा रहा है जिसकी 12वीं कड़ी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से किया है जिसमें साफ तौर पर दिखा है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत हजारों प्रतिभागी एक साथ मिलकर उन्होंने योगाभ्यास किया, उसके बाद आसन के साथ प्राणायाम और अंत में ध्यान करके यही संदेश दिया कि योग के साथ जो भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि अब हम एक परिवार बन चुके हैं। और आइए देखते हैं अब ग्राफिक्स के जरिए कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किन बड़ी बातों का जिक्र किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और इसका समावेशन योग के जरिए है कि योग सबको साथ लेकर चलता है, एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग से उम्र के हर पड़ाव में आप स्वस्थ रह सकते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि आप योग को कभी भी शुरू कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन जो है वो योग से बना है, योग पर आधारित है और योग के जरिए ही आप उसे आगे लेकर जाते हैं जब हम सफल जीवन की कामना करते हैं। आधुनिक समय में लोग जीवन के असंतुलन से जूझ रहे हैं और एक संतुलित अप्रोच को अगर आप आगे लेकर चलते हैं तो योग बड़ी भूमिका निभाएगा।
0: योग हमें संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है यानी कि एक बैलेंस लाइफ, यानी कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, यहाँ मानसिक संतुलन की भी बात हो रही है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, यानी दोनों तरफ से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अगर किसी में है तो सिर्फ योग में ही है। दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए योग आवश्यक है और स्वस्थ आयु का संदेश यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से दिया। साथ ही उन्होंने योग उत्सव के हर रंग को लेकर बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन का संकल्प ही है और योग ही उसका विकल्प है। योग से विश्व शांति का मार्ग खुलता है, यानी योग से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, यहाँ बड़ी जागरूकता की बात हो रही है, बड़े संदेश की बात हो रही है, यानी कि विश्व की शांति भी इस योग के जरिए ही जिसका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो रहा है। योग के अपने जीवन और को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, परिवार का हिस्सा बनाए, यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिया।
1: बिल्कुल, और योग 365 की पहल को आगे बढ़ाएगा और आगे लेकर जाने में उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है कि किस तरह से योग 365 की पहल को हम आगे लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि योग भारत की सबसे अगर प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है जो आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आज पूरा विश्व उसका अनुसरण करते हुए नजर आ रहा है, हमने तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताया। और एक संतुलित अप्रोच को लेकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी चर्चा का ये पूरा जो विषय है इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। ये महा कवरेज इस वक्त जारी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़ रही है इस खास शो के साथ।
2: हमें पता है
3: चमकी चाट से क्या बना है,
4: क्या बना है
5: सैंडविच, लस्से और चाट,
6: हर फ्रूट में चमकी चाट,
7: ड्राई फ्रूट और दही बड़े,
8: चमकी चाट से स्वाद बढ़े
9: और चाट पकड़ी सही बल्ले,
10: चमकी चाट से बल्ले बल्ले
11: स्वाद सिर्फ चमकी चाट।
12: हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा, यही है कोल इंडिया। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और योग के महा उत्सव पर हमारी नॉनस्टॉप कवरेज इस समय जारी है। आपने तस्वीरें देखी, कॉमन योगा प्रोटोकॉल देखा जो कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 12वीं कड़ी के मौके पर राष्ट्रीय समारोह इस बार कोलकाता में आयोजित किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के तहत मनाया जा रहा है, जहां शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको बल दिया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया और उन्हीं के साथ हजारों प्रतिभागियों ने भी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भाग लिया। आपको बताएं विश्व भर में अनेक कार्यक्रम इस समय आयोजित किए जा रहे हैं जो योग की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को रेखांकित कर रहे हैं।
1: आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से योग कर या फिर योग का जो नेतृत्व उन्होंने
2: जागृत करता है और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
3: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशन्ड एंड एज यू आल्सो मेंशन्ड नीलम जी दैट द टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
2: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं। हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी

0: सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए।
3: आकाशवाणी अनंतपुरम केंद्रम।

0: नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी

0: और योग अभ्यास करता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में

0: अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
0: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्रम। బొమ్మరిల్లు చిన్నపిల్లల కార్యక్రమం

0: doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years. We have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
1: Thank you.
0: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में. सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है. सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है. तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था. तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए. अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे. मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी. तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ. स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं खास करके, जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं. अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%. सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं. हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था. तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
0: Absolutely. So, Mr. Chinoy, Dr. Sharma has extensively explained that how the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed as suspicion.
0: Yes.
2: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
0: Mm-hmm.
2: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was

0: ठीक
1: हाँ
0: है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन्स की
1: स्वनिधि।
0: स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी जी
0: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो
1: जी
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है,
1: जी
0: उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
1: जी
0: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था।
1: जी
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज
1: और
0: के देखे।
1: कंपीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप
1: जी
0: वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओज और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ
1: जी
0: हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन,
1: जी
0: ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर 1 बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें, तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था, वो औरों देशों से बहुत ही कम था। लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे,
1: जी
0: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनिटाइज किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैश

0: बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर्स, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है, और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप एनवायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड, ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 trillion का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 trillion होगा, सर्विसेज 1 trillion होगा, और हमारी जो इकोनॉमी